0: Dubai.
1: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
3: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
4: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी रेडियो वाली takes you on a journey of hit tracks every evening at 7 p.m. Oh.

0: Biker Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मे जे बुझे ताहूं मैं कहे ना कोई।

विचार गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथिना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए, हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

खोर असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर।

पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई।

0: झिलमिल सितारों का आंगन होगा. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी जीवन मृति. वी हैव सीन दिस सॉन्ग. इट्स सच अ स्वीट सॉन्ग पिक्चराइज ऑन धर्म जी एंड रॉकी गुलजार वेयर दे आर एक्चुअली इन अ बीच एंड दे मेकिंग दी सैंड कैसल्स. बड़ा ही प्यारा एंड रोमांटिक वाला गाना है ये.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 in British sterling can get you up to 125 Indian rupees, 370 Pakistani rupees, 443 Sri Lankan rupees, 163 Bangladeshi taka, 83 Afghani afghans and approximately 1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold's trading at £104.66 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266

0: Bollywood Flashback with Kajol.
1: Well, a lot of you have guessed the movie, but कुछ लोगों को ये movie के answer correct नहीं थे. So मैंने सोचा कि एक बार और let me play another dialogue from this lovely movie. And of course, if you can guess the movie, then let me know कि right answer क्या है. And of course, the dialogue is.
2: सॉरी कह दो, शुक्र है जा रही हूँ, छुटकारा मिलेगा सबको। जब से आए उस घर का चैन खत्म हो गया। तुम्हें मालूम है मिनी और विंकी कितने परेशान हो रहे थे? मिनी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था, और मैं तब से इस घर के इर्द-गिर्द चक्कर काट रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग कहाँ जाते, क्या करते? इस तरह आधी रात को इस शहर में उठ के जाता है कोई, बच्चों को उठा के ले जाते हैं यहाँ से।
3: Have you been injured?
1: So I'm sure आपने guess कर लिया होगा. Then of course message me and let me know कि ये movie कौन सी है.
0: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. This is Leica Radio across the Midlands. Back-to-back hits across the Leica Radio network.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
4: हैव यू नोटिस the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: Laika Radio Network, broadcasting across the UK with Asian stations.
6: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: ये पल हम दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द अमेजिंग मूवी लम्हे इन द वोकल्स ऑफ आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हरिहरन साहब. क्या प्यारा वाला गाना है. एंड आई जस्ट लव दिस मूवी. श्रीदेवी एंड अनिल कपूर. ब्यूटिफुल वन.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What's up, Bappi Lahiri and S. Janki from the movie Sahib. Amrita Singh and Anil Kapoor were just amazing in this movie.
1: Laika Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Laika Radio.
0: So gold's trading at £104.66 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Laika Radio. This is Laika Radio across the Midlands.
2: Laika Radio.
1: Traffic and travel.
3: I'm Louisa Gale, and it continues to queue this Thursday morning as it's south on the M42. From this morning's accident, emergency repair works are still closing lane 1 between junction 4 for Shirley and the M40 interchange at junction 3A, or there is flowing freely now northbound from this morning's incident between junction 10 to the A5 at Tamworth up towards 11 for Burton. Slow now in Coventry in Eastern Green as the A45 Fletchamsworth Highway is partially blocked following an accident there just before Broad Lane, and remains slow in Birmingham in Yardley Wood as Yardley Wood Road remains partially blocked from this morning's accident at Haunch Lane, and congestion again through Cats Hill on the Stourbridge Road, as with the Templites by the Plough and Harrow Pub.
1: This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows, or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com, or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.
4: ये है लाइका रेडियो.
5: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
5: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99. एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99. फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99. लैला बासमती राइस 10 kg 11.99. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99. फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399. पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99. फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1. फाल्कन कैश एंड कैरी
6: 82 Assistant Street, LE1-2JU, yeah, Rowlett Hill, LE5-4UN.
5: Big deals, big savings, while stocks last.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
8: गारंटेड.
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे.
6: साउथ हॉल ट्रेवल.
8: फोन 02085748410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
9: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
10: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा.
11: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026. शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर. ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास. फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड. फ्रॉम £3,299 पर पर्सन. विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
12: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबो थिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है. बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500. पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10. विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA.
13: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
12: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Laika Radio Midlands.
13: For sponsorship inquiries, call Laika Radio on 0116 471 0697.
12: Or sales at laikamedia.co.uk.
4: Punjab di biggest tunes.

0: वोकल्स ऑफ मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह एंड आशा भोसले. एक और गाना इस आवर एंड वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का. वेल, बहुत मजा आया, बट रिमेम्बर हमें राई प्यार के. फिर मिलेंगे चलते चलते, एंड इट्स टाइम फॉर रवि शर्मा. गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय.
1: This is Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, the Midlands, and Greater Manchester.

0: बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के जून महीने की 18 तारीख। और भाई इतिहास में कुछ बहादुरी के किस्से लिखे गए हैं जो आज के चिंतन में हम जिक्र करेंगे उनका। आज के दिन के साथ जुड़े समाचार आप सुनेंगे 10:30 बजे। और बहन भाइयों गीत संगीत की महफिल सजी रहेगी दोपहर बाद 1 बजे तक रवि शर्मा के साथ दैट्स माय नेम, जुड़े रहिएगा। और देखता हूँ शायद आगे स्क्रीन पर कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन भी लिखा हुआ मिलेगा। और ऑलरेडी जुड़ गए हैं भाई बहुत सारे हमारे श्रोता, तो एंटर करते ही स्क्रीन पर अपना नाम अपना चेहरा दिखा देते हैं अपना नाम लिखा देते हैं, जिनमें हेतल पम्मी नीलम और साहब निर्मला जी आप सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। और अब और भी जुड़ जाएंगे, यानी जुड़े हुए तो ऑलरेडी हैं लेकिन उनके भी नाम आएंगे स्क्रीन पर, खासकर चिंतन के बाद आते हैं। तो साहब शुरुआत करें, इजाजत दीजिए, डायरी खोलता हूँ, शायरी बोलता हूँ। कितना दिलकश है ये अंदाज सुबह होने का, भाई स्टूडियो में आते ही मुलाकात गजब ढाती है। अपनी किस्मत में कहां चैन से सोना मुमकिन, रात भर याद तुम्हारी हमें तड़पाती है। इसने माना ही नहीं दोष कभी भी अपना, आंख तो दिल को ही मुजरिम सदा ठहराती है। भाई कुछ तो कहना था तुम्हें, कुछ तो कहना था, याद है मुझको लेकिन लब पे आती है कोई बात और चली जाती है।
1: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Like a Radio Network.
0: लीजिए साहब शुरुआत होती है धमाकेदार संगीत से, इस गीत से जो कह रहा है अपनी किस्मत में कहां चैन से सोना मुमकिन, रात भर याद तुम्हारी हमें तड़पाती है। और कुछ तो कहना था तुम्हें, याद है मुझको लेकिन लब पे आती है कोई बात चली जाती है। कैसे कहें साहब, हिम्मत ही नहीं पड़ती है, लब पे है पर आगे नहीं आती है।

0: लता मंगेशकर और मुकेश जी के स्वर में ये गीत भाई लक्ष्मी प्यारे की धुन पर सवार आज भी बहुत सारे भाई संगीत प्रेमियों की पसंद बना हुआ है। और इसमें जो वायलिन का पीस है ना वो प्यारे लाल शर्मा जी ने खुद बजाई है वायलिन। और भाई गीत कुछ हटके मनोज कुमार की फिल्म थी शोर, उससे ये गीत लिया गया था। और भाई फिल्म में शोर को लेकर के जो टाइटल ऐसा था कि स्वर से उसका संबंध है, आवाज शोर लगता है जब कोई व्यक्ति सुन नहीं पाता है दुनिया में क्या हो रहा है, तो भाई कितना भी शोर मचा हो उस पर असर नहीं कर पाता है, लेकिन वो उसको सुनने के लिए तरस जाता है जिसे शोर को बंद करने के लिए लोग चिल्लाते हैं। आज के प्रोग्राम की शुरुआत जिस गीत से हुई थी, अपनी प्रेम कहानियां, मेरा गांव मेरा देश, ये था फिल्म का नाम। और साहब कैसे मैं बताऊं, हाय शर्माऊं भाई, उस गीत से शुरुआत हुई, गाने वाली आवाजें लता मंगेशकर और सखियों की। तो साहब ये दो गीत बैक टू बैक सुनवाकर हम आन पहुंचे इस पड़ाव पर जबकि पाउंड का रेट बताएंगे भारतीय करेंसी में। रेडी हैं आप?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो नोट कीजिए साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज इस समय जो रेट दे रहे हैं वो है एक पाउंड के बदले 124 रुपए और 75 पैसे, 124.75 रुपीज ये रेट मिल रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ भाई दे से दैट सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, इस महीने के दौरान अगर भेजते हैं 1,000 पाउंड से ज्यादा तो देर इज चांस टू विन ए 75 पाउंड वाउचर एवरी डे। और इतना ही नहीं भाई, अगर 2,000 से ज्यादा भेजते हैं तो एवरी वीक 1 ग्राम गोल्ड कॉइन जीतने का चांस भी है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: और साहब आजकल तो भाई फुटबॉल का चर्चा है जिधर देखो, और खासकर जब इंग्लैंड की टीम खेल रही हो तो सब जानना चाहते हैं क्या रहा नतीजा कल का। तो आपको बता दें भाई फीफा वर्ल्ड कप जो मुकाबले चल रहे हैं उनमें कल इंग्लैंड ने क्रोशिया को 4-2 से हरा करके शुरुआत अच्छी की है, विनिंग शुरुआत हुई है। मतलब वो टाइम कब आएगा जब इंग्लैंड में फुटबॉल का वर्ल्ड कप आएगा, कितनी पुरानी बात होगी। एक बार जीता है इंग्लैंड ने भाई, उसको भी हम बार बार भुनाते रहे हैं लेकिन उम्मीद लगाते रहे हैं। वैसे कल के मैच में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को हराया 3-1 से और पुर्तगाल ने 1-1 की बराबरी पर मैच खत्म किया। आज होने वाले मुकाबलों में बता दें आपको, आज जो मैच हो रहे हैं उनमें एक तो शामिल है भाई चेक रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका का मुकाबला, 5:00 होगा मैच, और स्विट्जरलैंड वर्सेस बोस्निया ये मैच भी होगा, कनाडा वर्सेस कतर का मैच खेला जाएगा। तो साहब जो कुछ भी नतीजा आएगा आपका लाइक रेडियो नेटवर्क आपको बताएगा, और जिनकी बदौलत पहुंचा बताएगा वो कह रहे हैं कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ। रख लो भाई ये नतीजे सुनवाते हैं आपको, ये फुटबॉल की बातें पहुंचाते हैं आप तक। अगर आप लाइका मेंशन करके उनसे संपर्क करें तो मुफ्त में आप कानूनी मशवरा उनसे ले सकते हैं 15 मिनट तक का।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है लाइका रेडियो। लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 g 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN।
3: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
5: महाराजा टूर्स प्रेजेंट्स दिवाली धमाका 2026, 12 नाइट दिवाली और नवरात्रि क्रूज ऑन MSC वर्चुओसा, भजन जैमिंग, महफिल नाइट, रास गरबा, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट और फुल ऑन मजा। स्पेन और पोर्चुगल के सनशाइन पोर्ट्स, फुल बोर्ड क्रूज और इंडियन खाना इंक्लूडेड फ्रॉम ओनली £1,179 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846।
6: सेलिब्रेट Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold. It's spicy. It's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street. CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
11: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
12: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
13: Punjab the biggest tunes non-stop.

0: प्यार नहीं सीखा, नफरत करना सीख लिया, सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। कौन सिखाए प्यार में को? भाई उन्हें चिंतन सुनवाए आप। किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म गौतम गोविंदा से।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और साहब गीत संगीत की महफिल तो चलती रहेगी, लेकिन बीच में कंपटीशन जोड़ लें। आपको बताएं पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप विद एक्सक्लूसिवली विद धर्मा प्रोडक्शंस फॉर द गुजराती फिल्म जिंदगी, GINDAGI, जिंदगी नहीं जिंदगी वंस मोर, ये है टाइटल फिल्म का, जिंदगी वंस मोर स्टारिंग सिद्धार्थ रंडेरिया, विच रिलीजेज एट सिनेमाज दिस वीकेंड। लेकिन रिलीज होने से पहले भाई एक स्पेशल शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिर्फ इनवाइटेड लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, आप उनमें शामिल हो सकते हैं अगर आप जीत जाएं। दो टिकट्स हम देना चाहते हैं उस शो के, और ये स्पेशल इनवाइट जो शो है इसके जिंदगी वंस मोर का, ये कोर्ट हाउस होटल लंदन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के स्टेशन के नज़दीक है, वहाँ पर हो रहा है। बढ़िया सिनेमा हॉल है, अच्छा एटमॉस्फियर, अगर आप देखने जाना चाहते हैं तो कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। क्या करने है? अरे कुछ खास नहीं करना, थर्सडे 18 जून को शाम 6 बजे शो, अगर आप जा सकते हैं तो सिर्फ अपना नाम और फोन नंबर लिख के भेजिए, और भाई साथ में लिखिएगा जिंदगी JINDAGI, बस ये तीन चीजें आप भेजेंगे आपका पार्टिसिपेशन हो जाएगा, और इसी प्रोग्राम में नतीजा सुनाया जाएगा कि भाई किसने जीते हैं दो टिकट्स टू गो टू सी द फिल्म जिंदगी, गुजराती फिल्म ऑन 18th, तो आज ही 18th तो है, आज ही है ना, हाँ तो शाम जा सकते हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं जा सकते हो बिजी हो मेरी तरह तो भाई मर्जी आपकी, मत पार्टिसिपेट कीजिएगा। लेकिन 18 जून थर्सडे आज शाम को 6 बजे ये फिल्म दिखाई जा रही है, बढ़िया वेन्यू है आपको बता दूं, याद तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। 07424232323, दैट्स द नंबर वेयर यू आर सपोज टू सेंड योर एंट्री। जिंदगी लिखिए, अपना नाम अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा,
0: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। भैया खबर तो ये है कि एक बड़ा ओक वृक्ष जो है 1200 साल पुराना बताया जा रहा है, भाई उसकी मृत्यु हो गई है, वो इस बार उस पर पत्ते नहीं आए। नॉटिंघम शहर में ये पेड़ बड़ा अट्रैक्शन था सैलानियों के लिए, वृक्ष प्रेमियों के लिए, और भाई कंजर्वेशन चैरिटी ने बताया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई इस पेड़ को अब मृत घोषित किया जा रहा है, मर चुका है ये बताया जा रहा है। बड़ी भीड़ आती थी इसको देखने के लिए, रॉबिन हुड के नाम पर था भाई ये वृक्ष, लेजेंड ऑफ रॉबिन हुड ही है, इट हैज डाइड, एंशिएंट ओक ट्री। भाई उसका शौक मैंने बड़े प्रिजर्व करके रखा हुआ था, कितनी चीजें मतलब लुक आफ्टर, 1200 साल पुराना वृक्ष था। ऐसा है भाई एक वृक्ष जो है कुरुक्षेत्र के नजदीक भाई वहां पर जो है महाभारत के समय का बताते हैं उसे, वो भी बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसे भी लोग देखने जाते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको बता दें, ये खबर आई है कि रॉबिन हुड

0: 1200 साल पुराना ये वृक्ष हैज डाइड। और खबरें क्या हैं? खुशी की बात करें साहब, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोशिया को 4-2 से हरा दिया। पुर्तगाल को कोंगो ने रोका। डला स्टेडियम में खेले गए इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए क्रोशिया के खिलाफ, जबकि जूड बेलिंगम और मार्क्स रैशफोर्ड ने भी 1-1 गोल किया। दूसरी तरफ क्रोशिया की टीम ने मार्टिना बातुरिना और पीटर मूसा ने 1 गोल किया। तो भाई शुरुआत अच्छी हो गई, अब आगे देखते हैं क्या होगा, हम जोड़े रखेंगे आपको। इसके अलावा एक और मैच का जिक्र करें, महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार दूसरे मैच में जीत दर्ज करते हुए कल नीदरलैंड्स की टीम को 95 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए 5 विकेट पर, जवाब में नीदरलैंड ने 17 ओवर में ही 114 रन बनाए और टीम सिमट गई। कॉन्ग्रेचुलेशन में एक और मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से पराजित किया। ये विमेंस वर्ल्ड कप का ICC विमेंस वर्ल्ड कप का नतीजा था। अन्य खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर दस्तखत होने के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों को बधाई दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये समझौता जो है तुरंत प्रभाव से लागू होगा और इसके पहले कदम के तौर पर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेगा और अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी हटाएगा। भाई ये तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते पर दस्तखत होने के बाद गालिबाफ कह रहे हैं ये बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है और हॉर्मुज स्ट्रेट से हम फीस वसूल करेंगे। वेल साइन हो गए हैं। हालांकि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ ने ये कहा है कि भले ही समझौता हो गया है लेकिन ये बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। अन्य खबरों में एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा कि अब कीमतों को बिल्कुल वैसे का वैसा रखना मुश्किल हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में टिम कुक ने कहा कि मेमोरी चिप्स की लागत बहुत बढ़ गई है, इससे कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ाने के लिए मजबूर हो रही है। भारत से आने वाली खबरों में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं तो भी भारत में तुरंत पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं की जा सकती। कहते हैं कि तेल की कीमतों में कई कारक जुड़े होते हैं, कई कारण हैं, सस्ता तेल भारत तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, वो लगेगा। वाली ये थे आज के प्रमुख समाचार, समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुआ चाहते हैं, यही वो वक्त है जब हम आपके लिए चिंतन लाते हैं, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं नीतू सिंह का भीजा आलेख। नीतू जी, आप नारी की बहादुरी पर बहुत गर्व करती हैं। IIW की आप डेप्यूटी डायरेक्टर हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। और नीतू जी, आप याद दिलाना चाहती हैं उस महान बलिदान देने वाली वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। झांसी की रानी की आज पुण्यतिथि है, उनका बलिदान दिवस है। और कहती है कि नारी की भूमिका हर क्षेत्र में, खासकर स्वतंत्रता संग्राम में कितनी महान रही है, आज जिक्र कीजिएगा। नीतू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं, और आपकी संस्था IIW के लिए भी हमारी मंगल कामनाएं, और सभी बहादुर नारियों की ओर से, पुरुषों की ओर से भी, बच्चों की ओर से भी, बुजुर्गों की ओर से भी, हर स्वतंत्र भारत के नागरिक की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, उस वीरांगना को जिनका आज बलिदान दिवस है। भैया, ये भी बता दें कि मां शक्ति की पूजा हम इसीलिए करते हैं कि ताकतवर बने, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर रूप में ताकत की पूजा, ताकत प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि ताकतवर के सामने ही दुनिया नतमस्तक होती है, वरना जीने नहीं दे। इस संदर्भ में हमें हाउंसलो मंदिर से प्रमोद कैट साहब एक मीठा सा इनविटेशन भेजते हैं कि हम मंदिर में मां दुर्गा महिमा का गायन करने जा रहे हैं, श्री देवी भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं कल से, यानी 19 से 21 जून तक, हर रोज शाम को 5 से 7 बजे के बीच नेविल क्लोज हाउंसलो में स्वामी राम गोविंद दास जी कथा करेंगे श्री देवी भागवत, और उसके बाद प्रीति भोजन की व्यवस्था रहेगी। सबको मीठा सा निमंत्रण है, शक्ति पूजा और उस शक्ति को नमन। देखिए, हम परमात्मा की ताकत को भी शक्ति रूप में पूजते हैं, भगवती रूप में। और आइए याद करें स्वतंत्रता संग्राम की उस शक्ति की प्रतीक वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को। जानते हैं, बनारस में उनका जन्म हुआ था। साल बताते हैं 19 नवंबर 1828 में जन्म हुआ उनका। नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। इस नाम से एक घाट भी है गंगा जी पर, वहां बनारस में, काशी जी में। भाई मनु कहते थे, और इसे जब छोटी सी बच्ची थी मनु, तो हाथी को देख करके अपने पिता से कहती है कि मुझे हाथी पर बैठना है। अब भाई एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, बहुत संपन्न परिवार नहीं था। पिता ने कहा कि नहीं बेटी, तुम्हारे भाग्य में हाथी पे बैठना कहाँ लिखा है। तो मनु कहती है कि मेरे भाग्य में तो बहुत हाथी लिखे हैं, बहुत सारे हाथी, घोड़े, जवान, फौज है पूरी मेरे भाग्य में। उस समय पता नहीं था कि उनके मुखारविंद में सरस्वती माँ बोल रही थी, क्योंकि बाद में उनका विवाह हुआ झांसी के महाराजा के साथ। गंगाधर राव के साथ विवाह सूत्र में बंद करके झांसी की रानी बन करके वो पहुंची, लेकिन आप जानते हैं वो अंग्रेजों का जमाना था, और वो धीरे धीरे सभी स्वतंत्र राज्यों को चिंतन अपने अधीन कर रहे थे। भरी जवानी में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उनका एक बेटा था, वो उनसे भी पहले, पिता से पहले, वो भी स्वर्ग सिधार गया। अब ऐसे में अंग्रेजों ने एक पॉलिसी शुरू की थी, उसे हड़पने की नीति हम हिंदी में पढ़ा करते थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि अगर भाई अगर किसी की सत्ता पर अधिकार करने वाला कोई राजा का या रानी का पुत्र ना हो, तो ऐसे में अंग्रेज उस राज्य को हड़प लेते थे। लॉर्ड डलहौजी थे उस समय भाई गवर्नर जनरल भारत में, और कई राज्यों पर उनकी नजर थी। तो झांसी की रानी की जब कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने एक बेटा गोद लिया, लेकिन इसे मानने से इनकार कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने, और अंग्रेजों ने झांसी को अपने अधीन करने के लिए जंग छेड़ दी। सोचते थे एक औरत क्या मुकाबला कर पाएगी, आसानी से झांसी हमारी हो जाएगी, लेकिन लक्ष्मीबाई ने सर पे कफन बांध लिया। कहते हैं अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़ों पर सवार होकर के जो लड़ाई उसने लड़ी, अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। भाई आज उनकी शहादत के दिन हम उस वीरांगना की बहादुरी को प्रणाम तो करते ही हैं, और हम ही नहीं करते हैं, उस समय उनके खिलाफ लड़ रहे अंग्रेजों ने भी उन्हें सलाम किया। और ये शब्द जो भारत का बच्चा बच्चा बोलता रहा है, पढ़ता रहा है, हम उस जमाने में नहीं थे, लेकिन भाई हमारे स्कूल में जो किताबें थी और खासकर सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई जो कविता थी, वो हमसे महारानी लक्ष्मीबाई का परिचय कराती रही। वो आवाज
1: आज फिर वही गूंज उठे,
0: वो अंदाज,
1: खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी,
1: वो तो झांसी वाली रानी थी,
0: झांसी वाली रानी थी।

घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गई सवार। जख्मी अवस्था में भी उसकी तलवार और उसके वार अंग्रेजों के लिए था ये एक चमत्कार।

0: चमकुठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: चिंतन चिंतन।
0: आज 18 जून को उनकी पुण्यतिथि भाई। 18 जून 1858 का वो साल था, 1857 में जंग शुरू हुई थी और समाप्त हुई रानी के निधन के साथ, बलिदान के साथ। झांसी की रानी अमर है इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम की जो लौ जगाई उन्होंने वो एक विशाल युद्ध बनी बाद में। क्या उम्र थी रानी झांसी की? बस उसी उम्र के नौजवानों में एक ऐसा जोश पैदा हुआ बाद में, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और कितने ही बलिदानी जो है वो उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ कूद पड़े थे। चंद्रशेखर आजाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गीत, ये कहानियां, ये कविताएं लिखी गई। और बहन भाइयों, आज नीतू सिंह जी ने, ये वो नीतू सिंह नहीं है भाई, फिल्मी दुनिया से इनका कुछ लेना देना नहीं है, ये IIW वाली नीतू हैं। और नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के चिंतन के लिए और आज के इस विशेष दिन की याद दिलाने के लिए। एंटरप्रेन्योर हैं नीतू सिंह IIW से, इन्होंने आज का चिंतन, आज का विचार शामिल करवाया। और भाई धन्यवाद हंसलो मंदिर के चेयरमैन प्रमोद कैट जी का भी, जिनका मीठा सा निमंत्रण मिला है कि भगवती की शक्ति की पूजा और शक्ति की महिमा जानना चाहते हैं तो 19-20-21 को मंदिर में आइए, सत्संग सुनिए और प्रसाद पाइए, आशीर्वाद पाइए, क्योंकि आ रहे हैं स्वामी राम गोविंद दास जी शाम 5 से 7 बजे के बीच वहां कथा करने। तो भैरव भाइयों, ये था आज का चिंतन, आज का विचार। याद दिला दूं आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे के खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Note कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज जो रेट दे रहे हैं, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 124.75 रुपीज, 124 रुपए 75 पैसे भारतीय मुद्रा में, भारतीय करेंसी में एक पाउंड के बदले। और भाई ये तो दे ही रहे हैं, साथ में एक और चांस भी है। दे से दैट इफ यू सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच and the amount is over 1000 pounds, so there is a chance to win a 75 pounds voucher every day. Iske alawa, there is another chance to win 1 gram gold coin every week when you send over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Radio.
4: Laika Radio.
5: Laika Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: फुटबॉल की बात करें तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन इंग्लैंड की टीम को, कल उन्होंने जो है जीत हासिल की, तो शुरुआत हो गई है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंचते हैं। कल के जो नतीजे हैं उनमें इंग्लैंड ने क्रोशिया को हराया, पराजित किया। और साहब कल के नतीजों में कुछ और भी शामिल हैं टीमें, जैसे अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को हराया, पुर्तगाल ने कोंगो के साथ मुकाबला बराबरी पर ख़त्म किया, पर इंग्लैंड ने क्रोशिया को 4-2 से पराजित करके मई इस वर्ल्ड कप मुकाबले में शुरुआत जो है जीत से की। आपको बता दें भाई, लोग कहते हैं ये इस बार का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, जो पिछले जितने भी वर्ल्ड कप हुए उनके मुकाबले। देखते हैं आगे बढ़ते हुए, आज के मैच के बारे में बता दूँ, आज जो मैच खेले जाएंगे उनमें प्रमुख रूप से चेक रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा शाम 5 बजे, और कनाडा और कतर के बीच एक मैच खेला जाएगा यहाँ के समय के अनुसार रात 11 बजे। जो भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जानकारी.
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: ये भी याद दिला दें भाई, हमारे जो स्पॉन्सर हैं ये रैक लो वाले, वो कहते हैं कि अगर आप लाइका का नाम लेकर के हमसे संपर्क करेंगे तो 15 मिनट तक की जो लीगल एडवाइस है बिल्कुल मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे.
5: लाइका रेडियो. लोकेशन लोकेशन लोकेशन.
6: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
7: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
6: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
7: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
6: in Dubai.
8: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple, Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: बंद कर रेडियो।
2: नहीं करू कीधु ने।
1: अरे कहू बंद कर, मैं टीवी जोऊ छे।
2: तमारे जे जोऊ ते जुओ, समझा ने। ज्यां सुधी रवि शर्मा ने न सांभळू ने त्यां सुधी रेडियो बंद नहीं करू, नहीं करू, नहीं करू।
1: एटले
2: शु? वार छोड़ीस, घर छोड़ीस, पर रवि शर्मा ने नहीं छोड़ू। ना एटले रेडियो मां रवि शर्मा ने सांभळवानू नहीं छोड़ू।

0: है
1: Like our radio.
0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और लीजिए साहब, कुछ एक लोगों को धन्यवाद कहते हुए चले। देखिए, मुझे लगता है कि मैं एक्नॉलेज नहीं कर पाता हूँ सबको। इतने प्यारे प्यारे संदेश आते हैं और इतने सारे संदेश आते हैं आप भेजते हैं। मैं याद दिला दूं, एक तो आप वो जो कंपटीशन चल रहा ना जिंदगी वाला, जिंदगी और अपना नाम और फोन नंबर लिख करके भेजिए, क्योंकि आज शाम को कोर्ट हाउस होटल में उनका अपना सिनेमा हॉल है प्राइवेट भाई, उसमें ये गुजराती फिल्म दिखाई जा रही है। तो कंपटीशन चल रहा है, कोई एक विनर जो है दो टिकट्स जीतेगा। और बहुत से लोगों ने एंट्री की है, अगर आपने अभी तक नहीं की है तो 07424232323 इस नंबर पे तीन चीजें भिजवाइए, जिंदगी लिखिए और JINDAGI, जिंदगी नहीं जिंदगी, और भाई उसके साथ अपना नाम और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। और फिर सुनिएगा, रेडियो के आसपास रहिएगा कि किसके हिस्से में जाती हैं आज की दो टिकट्स। थैंक यू वेरी मच आंटी जी, गुरुदेव गांजा साहब, अर्जुन हंसा वोरा, रंजन महेंद्र पटेल, सुनीता शर्मा और महेंद्र बजारिया जी, पम्मी सिंह, रागिनी विजय, हमारे सटन वाले नीला चौधरी जी, निर्मला जी, अरुणा भूपेंद्र पटेल, रानी स्लो वाली, हरविंदर जी भाई, ये चिंतन प्रेमी है सब हमारे श्रोता, इनका नाम ना भी लू ना मैं तो भी भाई इनका संदेश आता ही आता है और एक एक शब्द मेरा हौसला बढ़ाता है चिंतन जुटाने के लिए। टोरंटो में उल्लास जी, हिना, रक्षा पटेल और सुखी, और आप कौन है जी, आपने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन ढूंढ लेंगे हम, आप हैं नीतू, अरे कौन सी वाली नीतू है आप, नीतू सिंह वाली या जोनसी वाली भी है नीतू जी, थैंक यू वेरी मच। और ज्योति, मितुल पटेल, निखिल भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कंपटीशन में बहुत सारे नाम आ गए हैं, इन्हीं में से कुछ देखते हैं विनर कौन होगा, जुड़े रहिएगा रेडियो के साथ।

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और नोट कीजिए रेट्स LemFi के एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 124.88 इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपए 368.24, श्रीलंकन रुपए 441.28, बांग्लादेशी टके 162.47, अफगानी 83.36 एंड केनियन शिलिंग्स 171.35.
2: लाइका रेडियो.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: LIKA Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold rate note कीजिए. Sona. The gold is sold at the rate of 103.76 pounds per
0: gram. Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
5: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
5: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड
6: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
5: Big deals, big savings, while stocks last.
7: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods.
8: Radio partner Leica Radio.
9: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
10: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
12: Aji aisa mauka phir kahan milega.
13: Maharaja Tours la rahe hain Captivating China 2026. Shanghai, Beijing, Xi'an aur Chengdu ka unforgettable safar. Great Wall, Terracotta Warriors, high-speed trains aur adorable pandas. Flights, hotels, Indian khana aur guided tours sab included. From £3,299 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956 154 846.
14: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
15: No more worries for me or you. साफ और ट्रैवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
16: जी टीवी HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
17: जगदात्री,
16: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
17: माला ले आना, लाइया जी।
16: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
18: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन।
16: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 जी टीवी HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
19: लाइक अ रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द UK विद एशियन स्टेशंस। This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
20: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
21: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
22: खुद से भी ज्यादा।
20: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
22: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
20: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8:00 ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
19: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: और ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12:00 की खबरों तक। स्वर्गीय मुकेश जी का स्वर।

0: आपने?
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू सुबह।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक हरी हरन उनके साथ स्वर मिला रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और साथी। और बहनों भाइयों इस सप्ताह के कलाकार हैं ये हरी हरन, तो कुछ और गीत आपको सुनेंगे मिलेंगे इस सप्ताह में वीकेंड पर।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: बहुत कम ऐसे गीत हैं जब दोनों बहनों ने मिलके गाया। भाई ये आशा और उषा गा रही थी, आशा भोसले और उषा मंगेशकर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Leica Radio. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: भाई ढूंढ देखते हैं कमल साहब अगर अवेलेबल हैं तो बड़ी अच्छी जानकारी है उनके पास क्रिकेट की। कमल
4: हेलो क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून।
0: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू कमल जी। बताइए मैच का, भाई दो मैच जो है बड़े एंजॉयबल थे, एक जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच था और दूसरा भारत और किसके साथ था भारत का मैच, ये अपना पड़ोसी हॉलैंड क्या कहते हैं उसको।
4: हाँ जी, तो रवि जी कल के गेम तो बहुत ही अच्छे गेम हो। पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का।
0: जी जी,
4: पाकिस्तान मुझे लगा इनफ रन्स नहीं है, 26 for 9, इजीली चेस हो जाएगा। बट जो मैंने फिर देखा बॉलिंग फील्डिंग पाकिस्तान ने जो की है, अमेजिंग बॉलिंग, पर सबसे बेस्ट थिंग थी जो विकेट कीपर जिसकी मेरी फोटो उसने खींची थी लास्ट वीक।
0: जी जी,
4: तो ये विकेट कीपर ने ऐसे शानदार कैचेस पकड़े और फील्डिंग बॉलिंग वो सो टाइट कि साउथ अफ्रीका जस्ट क्रैक्ड एंड जीते 127 for 8, 8 विकेट डाउन थी।
0: हाँ वही, तो
4: कैच भी ड्रॉप हुआ।
0: हाँ बड़ा क्लोज था मैच, मतलब ये जो समझ रहे थे कई लोग कह रहे थे कि जो हमारी पुरुषों की टीम है इतनी कमजोर तो महिलाओं की क्या होगी। अरे महिलाएं तो आगे निकल गई हैं, फातिमा की गेंदबाजी और वो दूसरी जो लड़कियां हैं अच्छी बॉलिंग कर रही थी,
4: बहुत अच्छे, दे प्लेड वेरी वेल। सो चलो गुड, इट इज बिट अर्ली, तो देयर इज स्टिल टाइम फॉर पाकिस्तान टू रीग्रुप एंड गेट बेटर एंड बेटर। दूसरा गेम हमारा इंडिया नेदरलैंड्स के साथ था।
0: जी जी,
4: और इंडिया इजीली जीत गए 209 for 5। तो नेदरलैंड्स 114, नवी टीम है, फर्स्ट टाइम दे आर डोमिनेट इधर किया, तो बहुत अच्छा था। और सुबह ऑब्वियसली जायंट्स ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को बीट किया था।
0: जी,
4: बट रवि जी इट्स ऑल अबाउट टुडे, आज है वेस्ट इंडीज का मैच है, आज तो अच्छा रहेगा बिकॉज देयर इज ओनली वन मैच टुडे।
0: अच्छा,
4: वेस्ट इंडीज टेकिंग ऑन स्कॉटलैंड,
0: क्या
4: और वो देखे क्या होता है लेटर ऑन इन द डे।
0: ओके, आप जुड़े रहेंगे भाई और जोड़े रखेंगे सब हमारे श्रोताओं को क्रिकेट से। कमल थैंक यू वेरी मच, और मुझे इंतजार है जब आप मुझे बुलाएंगे ग्राउंड में और हम साथ बैठ के देखेंगे।
4: वेरी सुन, यू नो रवि जी, ऑल द लेडीज आर आस्किंग के रवि जी किधर है, रवि जी किधर है। मैंने बोला कि ही नॉटी बट नाइस, ही विल बी कमिंग।
0: चल झूठा। Thank you very much, brother.
4: Thank you, Ravi.
0: So okay, nice of you. Okay.
4: Bye. Bye.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics, and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code Leica20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: Leica Radio.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: कुछ एक बातें याद दिलाते चलें भाई। एक तो हरिहरन का शो जो 4 जुलाई को है, द लेजेंडरी हरिहरन रिटर्न्स टू द यूके फॉर सोल इंडिया एट रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन। सैटरडे 4 जुलाई को शो है, southbankcentral.co.uk पर टिकट्स अवेलेबल हैं, अपना इंतजाम कर लीजिएगा। एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।

0: अच्छा अच्छा रुक जाओ, मैं अब अनाउंस करने लगा हूँ विनर का नाम, थोड़ा रेडियो के नजदीक आ जाइएगा।
1: रूठो ना रूठो मेरी जान, किसी बहाने।
0: ये गीत आप सुन रहे थे रफी साहब और आशा जी की आवाजों में। सुनवा कौन रहे थे? एक संदेश आपके लिए साउथ हॉल ट्रेवल की ओर से। साउथ हॉल ट्रेवल कह रहे हैं कि भाई दिस इज द टाइम टू गो फॉर हॉलीडेज ट्रेवल के लिए। भाई एक बड़ा क्या कहें उज्जवल नाम है इस क्षेत्र में। एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। कौन? साउथ हॉल ट्रेवल ऑफ कोर्स। कॉल देम ऑन 0208-574-8410।
2: हॉलिडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथ हॉल ट्रेवल, लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस। विजिट southholtravel.co.uk।
0: और लीजिए साहब बता दें आपको जिंदगी वंस मोर, ये जो फिल्म है ये दिखाई जा रही है आज, आज शाम को। ये स्पेशल शो है स्पेशल लोगों के लिए। और इफ यू वांट टू बी वन ऑफ दोज स्पेशल, बिकॉज दो टिकट हैं, तो भाई आप जरूर पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। जो नाम हमारे पास आए उनमें से विनर का नाम निकला है। द विनर इज कोर्ट हाउस होटल, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन के बिल्कुल नजदीक, बड़ी मशहूर जगह है और उसमें ये सिनेमा हॉल है। भाई बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारी उस हॉल के साथ, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हमने बड़े स्टार्स के साथ भी देखी और कई मीडिया के लोगों के साथ वहाँ फिल्में देखी। और भाई क्योंकि इसका संबंध जो है हमारे एक बहुत प्यारे और पुराने मित्र के साथ था, ये होटल उनका था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है और मैं श्रद्धा से उन्हें तो याद करता ही हूँ। लेकिन भाई आप जाएंगे हॉल, आपको सिनेमा हॉल स्पेशल ट्रीटमेंट वाला जो सिनेमा हॉल प्राइवेट जैसा लगेगा तो अच्छा लगेगा, फिल्म भी अच्छी लगेगी। गुजराती फिल्म छे, तमने गुजराती आवड़े छे तो तमे फ्री छो सामे, शाम को फ्री है ना, मने आवड़ती नहीं सो करो, बोलवानी कोशिश करो छो तो मेरे कुलीग्स मुझे डांटते, रहने दो तुम तो रहने ही दो भाई, आप बिल्कुल मत रहने देना, जरूर जाना। और ये स्पेशल शो स्पेशल लोगों के लिए आज दो टिकट्स जिस स्पेशल व्यक्ति को जा रहे हैं उनका नाम है संदीप, जिनके फोन नंबर के आखिर में आता 910, ये फिगर आती है। संदीप कॉन्ग्रेचुलेशंस, मस्ट गो टू द कोर्ट हाउस होटल दिस इवनिंग, शाम को आज 6 बजे शो है, देखिएगा और रवि शर्मा को दिल से शुक्रिया कहिएगा।
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Ye hai Leica Radio.
3: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
4: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
5: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
6: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
5: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
7: Maa, dulhan ke liye makeup.
5: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
10: फोन 0208574-8410।

0: इतना उतावला है, मैं तो कहता हूँ इसकी शादी करा ही दो, एक नहीं दो करा दो। रोता हुआ आएगा, चढ़ जा बेटा घोड़ी पे, भली करेंगे राम। सेहरा बांध ले, तलवार टांग ले, और फिर शादी के मंडप से भाग सकता है तो भाग ले।
1: Track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates, what they giving for £1, £1 के बदले भारतीय करेंसी में 124.78 रुपीस, पाकिस्तानी 367.75, श्रीलंकन रुपए 440.9, बांग्लादेशी टके 162.26 और अफगानी 83.25.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of 103.39 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: मुकेश जी के स्वर के प्रेमियों, ये गीत अपने नाम कर लियो, और साथ में मुकेश जी के भाई एक और सुरीली आवाज, वाणी जयराम। वाणी वही बोले रे पपीहरा वाली,

और अब आप जिंदगी में आइए भाई, जिंदगी फिल्म जो आप देखने जा रहे हैं, आप जानना चाहते हैं टिकट्स कहाँ मिलेंगे, भाई आपके टिकट्स वहाँ पर होंगे। आप चले जाइएगा कोई भी आइडेंटिफिकेशन लेके, आपका नाम, आपका फोन नंबर, वो सब वहाँ पर, और आपके टिकट्स वहाँ पर सुरक्षित हैं। जाइएगा और फिल्म का मजा लीजिएगा आज शाम को 6 बजे, बल्कि थोड़ा जल्दी जाइएगा। कोर्ट हाउस होटल नियर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन।

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: और लीजिए साहब, चलने का समय हो गया, पर याद दिला दूं कि आज बाली ब्रह्मभट्ट की जगह सरिता ब्रह्मभट्ट, ब्रह्मभट्ट नहीं है वो, सरिता अग्रवाल है। अच्छा, सबर वाली है सरिता, सबर वाल आ रही है भाई अपने मीठे मीठे गीत और अपना अंदाज, अपनी आवाज लेकर के। और रवि शर्मा क्या कहना चाहते हैं, क्या वक्त से शिकायत, मुझे फुर्सत ही नहीं है। वाह वाह कहते होते हैं सरिता जी, या कहते दुबर्रर। क्या वक्त से शिकायत, मुझे फुर्सत ही नहीं है, टिक कर कहीं बैठूं मुझे आदत ही नहीं है। मैं रोज दूर आपसे जाता जरूर हूँ, पर ये ना समझना कि मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है हाँ, बहुत सारे अपने आप से और किससे सही था जी। आपसे मोहब्बत करके मैंने रमेश से पिटना है तो बहनों भाइयों याद करना। हाँ
2: तो जीजा हो ना।
1: अच्छा, मैं आपका जीजा हूँ। याद करना और याद आना।

0: रही है।
1: जी हाँ, सबसे हसीन तो वो हैं जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। यू आर लिसनिंग टू लाइक रेडियो नेटवर्क के जरिए ये आवाज़ आपके घर तक पहुंच रही है। आम सरिता सबरवाल सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभट्ट जी। उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम के बैक टू बैक दोनों गाने आपने पसंद किए। दिस कवाली वॉज फ्रॉम द फिल्म जमाने को दिखाना है, 1981 में ये रिलीज हुई थी फिल्म। एंड गीत में आवाज़ें आपने, कवाली में आवाज़ें सुनी शैलेंद्र सिंह एंड आशा भोसले की। और प्रोग्राम का आगाज़ किया मैंने गॉड एंड गन के एक खूबसूरत से गीत के साथ। इसके दो वर्जन्स हैं, एक कुमार सानू ने गाई, एक साधना सरगम ने। मैंने साधना सरगम वाला गीत शामिल किया, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। आज अगर आप अपना बर्थडे मना रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई हो। शादी की सालगिरह है या कोई और खुशी का मौका है तो हम बराबर के शरीक हैं आपकी खुशियों में। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते चहकते महकते रहें। और इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चेयर अप। लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय। जियो शान से मुस्कुराते गुनगुनाते चहकते महकते और थिरकते हुए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: राइट भैया, SBI UK के जरिए अगर आप पैसे करवाना चाहते हैं ट्रांसफर कहीं भी, तो आज आपको क्या रेट मिलेगा इंडिया में? अगर आप पैसे कहीं भी करवाना चाहते हैं तो आज आपको मैक्सिमम मिलेंगे 124 rupees and 55 paisas अगेंस्ट 1 British sterling pound. सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड over 1,000 pounds. Also a 1 gram gold coin every week when sending over 2,000 pounds. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal Bhat, Pav Bhaji, Biryani, Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chip, Mango Pulp, Pani Puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops Ma.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
7: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed this see panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Leica Radio.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 700. £111,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
0: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
0: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
11: Ye hai like a gold too.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: It's summer on the Leica Radio Network.
2: सरिता है आपकी मेजबान इस वक्त और आई एम सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मवर्ती और मुझे उम्मीद है कि गीत आपको पसंद आ रहे हैं. अमरजीत सूरा आप सुन रही हैं, इंजॉय कर रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी अ लवली मैसेज.

ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड शर्मीली कितनी अच्छी फिल्म थी, कितनी प्यारी फिल्म थी, वो आप सबने देखी होगी तो ज़रूर जानते होंगे इस फिल्म के बारे में. एंड एक गाना है जो मैं प्ले करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही दो गीतों में से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद आएगा. तो मैं आपको चॉइस दे रही हूँ. संगम 1964 की फिल्म है और संगम के गीत शामिल करने की एक वजह ये भी है कि ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी. सो आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है सरिता गलत भी हो, आप चेक कीजिएगा. तो मुझे बताइए, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर सुनना चाहेंगे आप या फिर बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है. और उससे पहले मैं एक गीत सुनवाने जा रही हूँ सावन भादों से, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हरिहरन जी के प्रोग्राम के बारे में. सिंगर हरिहरन इज रिटर्निंग टू द यूके विद अ स्पेशल वन ऑफ इवेंट ऑन सैटरडे 4th जुलाई.

0: आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी साहब की आवाजें फ्रॉम द फिल्म सावन भादो। ये गाना पिक्चराइज हुआ था नवीन निश्चल एंड रेखा पर और ये इनकी थी पहली फिल्म। आपको गीत पसंद आया ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ ही मुझे वोट्स दे रहे हैं और अभी तक एक वोट मुझे मिला है बोल राधा बोल और बाकी के सभी वोट्स प्रेम पत्र पढ़कर। तो कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं जल्दी से मुझे बता दें। वी स्टिल गॉट टाइम।
1: It's all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, रफी साहब की आवाज एंड शंकर जयकिशन का संगीत। हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था ये इस गीत को, और इस गीत को बहुत से मेरे साथी सुनना चाहते थे। कुछ एक नाम मैं जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। अमरजीत सूरज जी, हंसा वोरा जी, शेखर जी, रमा पटेल, रंजना कुकाडिया, भरत गंगाराम जी ने कहा था बोल राधा बोल, अनीता जी प्रेम यही गाना सुनना चाहती थी, मानसी जी आप, एंड महेंद्र पटेल क्रॉयडन में यस थैंक यू, एंड जयंत एंड मीना जी, विजय गुजरी जी, रमीला पटेल इन हैरो, स्वीटी कालरा जी, दिनेश पोपट जी, फरीदा गुलाम अली जी, आप सभी की यही पसंद थी। कुछ नाम छूट गए हैं जो मैं बाद में लेने की जरूर कोशिश करूंगी। एंड संगम आज ही के दिन 1964 में रिलीज हुई थी। संगम वॉज डायरेक्टेड, प्रोड्यूस एंड को रिटन बाय राज कपूर साहब, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन इंडियन सिनेमा। इट वॉज द फर्स्ट मेजर इंडियन फिल्म शॉट एक्सटेंसिवली इन यूरोप, इंक्लूडिंग लोकेशंस इन स्विट्जरलैंड, पैरिस एंड वेनिस। एंड फिल्म स्टार राज कपूर, वैजयंती माला एंड राजेंद्र कुमार इन लीड रोल। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड अ लव ट्राइंगल इन्वॉल्विंग फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ पोस्ट वॉर रोमांस एंड इमोशनल रियलिज्म ऑन अ लार्ज स्केल। एंड द फिल्म इज नोन फॉर इट्स लेविश प्रोडक्शन वैल्यू, स्पेशली इट्स इंटरनेशनल शूटिंग एंड कॉस्ट्यूम डिजाइंस। म्यूजिक बाय शंकर जयकिशन एंड गीत सारे काफी फेमस हुए थे इस फिल्म के। सो मुझे उम्मीद है कि गीत आपने पसंद किया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 124.81, Pakistani rupees 368.23, Sri Lankan rupee 441.49, Bangladeshi taka 162.49, Afghani's 84.21, Kenyan shillings 171.30 and US dollars 1.32.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LIKA. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Right, gold ka rate is worth market mein 103 pounds and 22 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
0: आप सभी जानते हैं ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं जैमिन फूड्स वाले, और उनकी बदौलत ये प्रोग्राम बाली जी ने बहुत सारे टैग्स भी बनाए हैं और आप हमारी सोशल मीडिया पर देखते भी रहते हैं। आज के प्रोग्राम का अगला गीत जिसे मैंने असली नकली से चुना है 1962 की फिल्म से, वो आ रहा है, लेकिन उससे पहले और भी बहुत से काम।
2: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो, वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा, मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM, लाइक अ गॉड एंड Like a Radio Midlands.
3: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat.
4: Bali Brambat.
3: Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 g 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश
5: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
6: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises
6: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
6: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold. It's spicy. It's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street. CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
13: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work that way. Even if it's a good answer, for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
14: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
15: Hey, boy!
16: Coast Guard, we're stuck.
17: Okay, help's on its way.
16: Hold on, mate.
18: Shoes, tide, phone.
19: Back before dark, love. Okay.
20: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
21: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
22: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This is Leica Radio across the Midlands. Another huge giveaway is coming. Leica Radio Network.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों गीत बहुत खूबसूरत थे। आज मैं याद कर रही हूँ जानकी दास जी को, जानकी दास मेहरा, जो कि हिंदी सिनेमा के ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाए जाते हैं। हिंदी सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, प्रोडक्शन डिजाइनर एंड ऑल्सो वो साइकिलिंग में भी चैंपियन रहे हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी आपको ज़रूर दूंगी। अब ये गाने इन पर पिक्चराइज नहीं हुए क्योंकि वो बहुत पहले काम कर चुके थे, लेकिन कुछ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, किसी फिल्म में उन्होंने प्रोडक्शन का काम संभाला था और किसी फिल्म में एज ए कैरेक्टर एक्टर भी उन्होंने काम किया। बहुत सी बातें होंगी, लेकिन आइए ज़रा जल्दी से आपको बता दें, SBI के ज़रिए अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो क्या रेट मिल रहा है आपको?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, एक पाउंड के बदले आज आपको मिल सकते हैं 124 रुपीज़ एंड 55 पैसा। से डिपेंड्स कि कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds। ऑल्सो 1 gram गोल्ड क्वाइन every week when sending over 2,000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: भी हमारे साथ रहेंगे तो आपको बताते भी रहेंगे हम सब कुछ। गाना एंड पनामा के बीच में मैच 1-0 से जीता है एंड ग्रुप के का उज़्बेकिस्तान एंड कोलंबिया के बीच मैच हुआ 1-3 एंड आज शाम को मैच होने वाला है चेक रिपब्लिक एंड साउथ अफ्रीका में, 5 बजे शुरू होगा। इन स्विट्जरलैंड एंड बोस्निया के बीच में ये मैच होने वाला है शाम को 8 बजे एंड कैनेडा एंड कतार के बीच मैच होगा 11 बजे रात को।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, Falcon Cash and Carry,
5: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
4: Big deals, big savings, while stocks last.
6: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026, 12-night Diwali or Navratri Cruise on MSC Virtuosa. Bhajan Jamming, Mehfil Nights, Ras Garba, Bollywood Entertainment or Full-on Maza. Spain or Portugal ke Sunshine Ports, Full Board Cruise or Indian Khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on
9: 01 02 0 396 3 5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
9: in Dubai.
10: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
11: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
12: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
13: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 01163325100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एग. Extraordinary.
14: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
15: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favorite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये गीत मैंने चुना था किस फिल्म से, नौकर बीवी का। इस फिल्म के लिए जो हमारे आज के कलाकार हैं जिन्हें हम याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर, इस फिल्म में उनका रोल क्या था ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। डायरेक्टर पर्सनल असिस्टेंट थे वो। इस फिल्म में रीना रॉय थी एंड अनीता राज थी, राज बब्बर थे, धर्मेंद्र थे, कादर खान थे, ओम प्रकाश जी थे और राजकुमार कोहली ने इसे डायरेक्ट किया था एंड ही वॉज द पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर। सो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एज ए प्रोडक्शन डिज़ाइनर जानकी दास वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडिंग ऑफ मैनी फेमस इंडियन एक्टर्स करियर्स एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मधुबाला's रोल इन सोरा मोदीज दौलत in 1947 and also introduced Meena Kumari in Nana Bhai Bhatt's Hamara Ghar and Khushbu in Sunil Dutt's Dard Ka Rishta and he also introduced actress Mala Sinha in Hamlet produced and directed by Kishore Sahu. Inhone 1910 mein inka janm hua tha, 2003 mein aaj hi ke din ye is duniya ko chhod kar gaye lekin kahin bhi inki date of birth nahi hai. So 1910 बस इतना ही लिखा है कि 1910 में इनका जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा के उन दुर्लभ कलाकारों में से ये एक थे जो अभिनय, खेल, लेखन और प्रोडक्शन डिज़ाइन चारों क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़कर गए। उन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों में काम किया और कई दिग्गज अभिनेत्रियों को लॉन्च भी किया जिनके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया। इन 1985 ही रोड द स्क्रिप्ट फॉर द फिल्म यादों की कसम। और भी बातें करूंगी लेकिन और भी बहुत से काम है ना।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: राइट भाई, किशोर कुमार के सभी फैंस के लिए खुशखबरी। किशोर कुमार फैंस, गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय, इंद्रानी, संजय विद हिनल एंड 515 बैंड। इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स। टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और कॉल 0208-514-5400। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड रेडियो।
3: ये है लाइका रेडियो।
4: Of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Right, Coca Noodles के माध्यम से ये गीत आप सब तक पहुंच रहा है। फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म में भी आपने देखा था जानकी दास जी को। इनका रोल क्या था वो भी मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। 1960 की फिल्म थी। ही वॉज अ टीचर इन दिस फिल्म। इसके अलावा इन्होंने आरजू में भी काम किया था।

0: और ये गीत मुकेश जी की आवाज में गाया हुआ साथ दे रही थी लता मंगेशकर। ये गीत आप तक पहुंचाया किसने?
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
0: जल्दी से आपको याद दिला दूं, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम अप विद द जी टीवी फॉर मिथोलॉजिकल स्टेज शो हमारे राम, टेकिंग प्लेस बिटवीन 9th एंड 12th ऑफ जुलाई एट लंडन्स एवेंटियम अपोलो। इट स्टार्स आशुतोष राणा एज रावण एंड राहुल बुचर एज राम। और ये भी बता दूं कि हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनरशिप में कौन है हमारे साथ, हमारे प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागा सन, एंड इनकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो डिटेल्स एट लाइका रेडियो डॉट कॉम पर आपको मिल सकती है।
2: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: हाय राम।

0: द बर्निंग ट्रेन इस फिल्म से चुना गया गीत आप सुने आशा भोसले एंड किशोर दा की आवाजों में। जानकी दास जी को हमने याद किया लेकिन इनमें से कोई भी गाना शायद उन पर पिक्चराइज नहीं हुआ लेकिन इन सभी फिल्मों के साथ उनका नाता जरूर रहा। एंड लाहौर में 1910 में इनका जन्म हुआ और निधन हुआ 18 जून यानी आज ही के दिन इन 2003 में। जानकी दास हैड ए हार्ट एलिमेंट फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम एंड बट वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द लोकल हॉस्पिटल 2 days बिफोर हिज डेथ एंड ही डाइड ऑफ कार्डियक फेलियर एट द जूहू रेजिडेंस। अपने घर में ही उनकी डेथ हुई थी 18 जून 2003 एंड ही वॉज 93 years ऑफ एज। वेल इनका साइकिलिंग में भी योगदान रहा। 1930-40 के दशक में भारत के शीर्ष साइकिलिस्ट में वो शामिल थे और 1938 के ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया था। सौरभ बूट के साथ मिलकर साइकिलिंग फाउंडेशन भी उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी एंड 1934 और 42 के बीच कई विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का दावा भी किया था। फिल्मी करियर पहली बड़ी पहचान इनको खजांची से मिली थी 1941 में। 1000 से भी ज्यादा फिल्में इन्होंने की। कभी न्यूज रिपोर्टर, कॉमिक विलेन, चरित्र अभिनेत्रा के रूप में प्रसिद्ध हुए। सो मुझे उम्मीद है कि जो गीत मैंने शामिल किया आपने पसंद किए। एंड आखिरी गीत इस आवर का होगा फिल्म साजन से। साजन का गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप सुन पाएंगे लेकिन उससे पहले बहुत कुछ और भी है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today at this moment. Indian rupees 124.79, Pakistani rupees 368.49, Sri Lankan rupee 441.78, Bangladeshi taka 162.59, Afghanis 84.6 and US dollars 1.32.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है 103 pounds and 45 pence पर ग्राम।
1: जूलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278। लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
0: भाई ढेर सारे मैसेजेस है मेरे सामने। रूप साही जी, थैंक यू सो मच। हंसा बोरा जी, जगतार जी, आप वैंकूवर में हैं। मानसी जी, देशराज बसंत जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का भी। स्वीटी कालरा जी, महेंद्र बरजारिया जी, शेखर जी, आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम और मुझे एक फोटो भेजिए। अमिताभ बच्चन मुझे ट्रॉफी दे रहे हैं और पूछते हैं कब मिली थी ये ट्रॉफी। रियली अच्छा, चलिए और बातें बाद में।
1: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
4: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है।
5: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
6: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
5: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
7: Ma, dulhan ke liye makeup.
5: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
7: 105 shows pura karya pachi, have Leicester ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
8: Jay's Entertainment line avi rahya chhe. Sakhna re jo husband ji.
7: Leena Shah ane Samir Shah saate hasiyano full dose. 28 June People Center Leicester ma be shandar shows. Bapore adi vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834832249 athwa eventbrite.co.uk. Sakhna re jo husband ji.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
10: सेलिब्रेट फादर्स डे ऑन संडे 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
11: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
12: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert. Pooja Sweets and Savories.
10: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
12: Pooja Sweets and Savories.
1: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत था हम दिल दे चुके सनम फिल्म से, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी 1999 में. हम दिल दे चुके सनम कैसी फिल्म थी आप सभी जानते हैं. द फिल्म इज अ रोमांटिक ड्रामा डायरेक्टेड बाय संजय लीला बंसाली एंड इट बिकेम वन ऑफ द डिफाइनिंग बॉलीवुड फिल्म ऑफ द लेट 1990s. इट इज स्पेशली नोन फॉर इट्स इमोशनल स्टोरी टेलिंग, ग्रैंड विजुअल्स एंड म्यूजिक. और कास्ट क्या थी इस फिल्म की, सलमान खान थे एज समीर, ऐश्वर्या राय बच्चन एज नंदिनी एंड अजय देवगन एज वनराज. स्टोरी थोड़ा सा बता देती हूँ. नंदिनी फॉल्स इन लव विद समीर, अ म्यूजिक स्टूडेंट एंड बट शी इज फोर्स्ड इन टू एन अरेंज मैरिज विद वनराज एंड द स्टोरी एक्सप्लोर्स लव, ड्यूटी, सेक्रीफाइस एंड इमोशनल मेच्योरिटी. संगीत इसका बहुत ज़बरदस्त था. इस्माइल दरबार ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया था विद आइकॉनिक सॉन्ग्स लाइक तड़प तड़प के, जो मैंने शामिल किया, निम्बुड़ा, चांद छुपा बादल में, सारे के सारे गाने ही बड़े मशहूर हुए थे. एंड वन सेवरल फिल्म फेयर अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर. इट वॉज अ मेजर कमर्शियल एंड क्रिटिकल सक्सेस एंड इट हेल्प एस्टेब्लिश बंसाली, संजय लीला बंसाली सिग्नेचर स्टाइल ऑफ ग्रैंड इमोशनल सिनेमा. सो मुझे उम्मीद है कि गाने आप दोनों के दोनों गीत आपने पसंद किए, हम दिल दे चुके सनम का भी एंड ऑल्सो तुमसे बढ़कर. ये था काम चोर का गीत जो 1982 में रिलीज हुई थी.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to kitne paise? 124 rupees and 55 paisas. And send money to India by SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000 and also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Right, घाना एंड पनामा के बीच में 1-0 एंड उज़्बेकिस्तान एंड कोलंबिया के बीच 1-3 से मैच जीता गया. एंड चेक रिपब्लिक साउथ अफ्रीका के बीच मैच होने वाला है आज शाम 5 बजे एंड स्विट्जरलैंड एंड बोस्निया के बीच में मैच होगा आज शाम 8 बजे एंड कनाडा एंड कतार के बीच मैच होने वाला है 11 o'clock दिस इवनिंग.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
3: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
4: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN.
4: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट.
6: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre World, Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed deer-seat panto fun for all the family. And with tickets tickets starting from £15. Click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods.
7: Radio partner Leica Radio.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
9: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
16: No more worries for me.
17: Southall Travel, at all protected.
18: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
19: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
20: Four beers, please, garçon!
19: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
21: New hits on Leica Radio.

0: What a beautiful song. Hope you enjoyed it too. बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं. थैंक यू एवर सो मच. मैंने आप सबको जवाब जरूर दिया, लेकिन अगर ऑन एयर नाम ना ले सकी तो माफी चाहती हूँ. मिसेस शेख आप भी सुन रही हैं. थैंक यू.
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली.
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट derivalley.net.
0: And this is Suman Kalyanpur and Mohammad Rafi Saab on vocals. Beautiful song. Enjoy kijega.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: राइट भी इतने प्यारे प्यारे गीत कहते हैं, सभी मुझे लिख रहे हैं बार बार कि सरिता जी आपकी प्लेलिस्ट बड़ी खूबसूरत है. थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए, आपके प्यार के लिए. आप सुन रहे हैं, अपना वक्त देते हैं. एंड शेखर थैंक यू आपका भी बहुत बहुत. महेंद्र बरजारिया जी, विजय गुजरी जी, भारती जी, आप सभी बार बार मुझे एहसास दिला रहे हैं कि आप मेरे आस पास हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. और अब देखते हैं कि हमारे कमल प्रभाकर जी हमारे साथ पहुंचते हैं तो हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे. कमल जी बताएंगे हमें कि क्या स्कोर हो रहा है इस वक्त, विमेंस क्रिकेट अपडेट हमें देंगे.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
2: राइट भाई, कमल जी को मैं फ़ोन तो कर रही हूँ लेकिन अभी तक वो शायद रेडी नहीं है, तो ही इज़ नॉट आंसरिंग. एंड लेट्स सी, बेल हो रही है उनकी, पर जब तक वो फ़ोन उठाते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चल रहा है क्रिकेट के मैदान में. राइट, ओके. आज न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा है. हाँ जी कमल जी, वेलकम. एंड हमारे एक्सपर्ट हैं जो पूरी अच्छी तरह हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो बताइए कमल जी क्या चल रहा है.
4: बस ऑल गुड सरिता जी. एज यू नो कि आज तो एक ही मैच है. मैच टुडे विल स्टार्ट 18:30, व्हिच इज वेस्ट इंडीज टेकिंग ऑन स्कॉटलैंड. इट विल बी अ ग्रेट मैच, यू नो. इट विल बी, यू नो, आई थिंक इवन साइड्स, पर चलो देखते क्या होता. पर सरिता जी कल वाज फैंटास्टिक डिस्प्ले फॉर क्रिकेट. कल क्या हुआ, यू नो, ऑस्ट्रेलिया इजिली वन अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड देन इंडिया कंफर्टेबली वन against Netherlands. But the most exciting game of yesterday was Pakistan, you know, against South Africa, two giants.
2: Yeah.
4: But
2: बहुत अच्छी.
4: और साउथ अफ्रीका बॉल सो वेल, लाइन एंड लेंथ, दे गॉट पाकिस्तान इन ट्रबल. इतने 5 विकेट 33 के लिए नीचे हो गए थे एट वन स्टेज.
2: जी बिल्कुल, मैं वॉच कर रही थी. हां जी,
4: बहुत अच्छा फिर किया बैटिंग, एंड देन दे गॉट टू 126, व्हिच आई थॉट वाज नॉट इनफ. बट बिकॉज दे बॉल्ड वेल एंड दे फील्डेड वेल, कैचिंग वेल, they put a great fight. So South Africa just went over the line with a few balls, about 2 overs to spare. So that was a great fight by Pakistan, and I think it will be a great example for cricket. So it was a lovely, lovely day, Sarita.
2: Yes, and aaj shaam ko 6:30 baje shuru hone wala hai match Scotland and West Indies ki ladies ke beech mein.
4: Haan ji, aapko kya lag raha hai kaun jeetega?
2: वेल, हम यहाँ रहते हैं तो स्कॉटलैंड को ही मैं सपोर्ट करूंगी. एंड वैसे वेस्ट इंडीज की भी बहुत स्ट्रांग टीम है, तो लेट्स सी क्या होता है.
4: दैट्स राइट. और सरिता जी, कोई मैच में आप भी आना, कोई
2: जरूर जरूर जरूर आऊंगी. मतलब मैं खेलने के लिए आऊं या एज ए स्पेक्टेटर आऊं?
4: दोनों ही हो

0: बेटी बेटे से चुना गया गीत आपने सुना रफी साहब एंड सुमन कल्याणपुर जी की आवाजों में। देसराज बसन जी आपने लिखा है कि आज बॉलीवुड की ओरिजिनल ब्यूटी क्वीन सायरा बानो की मां और दिलीप कुमार की मदर इन लॉ बेगम नसीम बानो की 24th पुण्यतिथि है और वो मिनर्वा मूवी टोन और फिल्मिस्तान की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी कुछ हिट फिल्मों के नाम है खून का खून, पुकार, शीश महल, नूरजहां, चल चल रे, नौजवान वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो एंड आई एम सॉरी मैं उनका कोई भी गीत शामिल नहीं कर पाई हूँ।
1: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
2: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur stunning coast of Cornwall ko explore kijiye.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
1: CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा.
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे CTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. A Leica Radio classic plays now.

0: Free Disha Rice Tasting on the 20th and the 21st of June from 10 a.m. to 5 p.m. at Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Disha Basmati
1: Rice. 105 શોઝ પૂરા કર્યા પછી હવે લેસ્ટરમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
2: જેઝ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી
1: લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટરમાં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 2:30 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co .uk सकना रह जो हस्बैंड जी
3: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए
4: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा
5: नाम परशुराम अधर्म का करता हूँ काम तमाम
3: अरे कहाँ हो तुम
4: हो आलो आलो
5: परिवार उसके लिए चारों धाम बाहर वो है परशुराम
6: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 p.m. only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
7: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
8: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
7: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
8: दिल तो टूट पे किया.
7: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
9: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
7: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियां हर शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.

गया जिसके भी बस की वो आके पकड़ ले। इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: लव तुझे मैं लव करता हूँ, आप किसे लव कर रहे हो
1: हमें भी बता दो, शर्माओ मत।
2: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley, soft and tender.

0: This is Leica Radio across the Midlands.
1: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk. And celebrate Father's Day in Ambala style.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
3: रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है. क्यों नया होता है?
4: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
5: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे? उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
4: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
6: Maa, dulhan ke liye makeup.
4: Shut up! For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
8: गारंटेड.
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
8: फोन 0208574 8410.
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
9: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
10: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
11: जगदात्री,
10: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
11: माला ले आना. लाइया जी.
10: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
12: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन.
10: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
13: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
14: हो हो, अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा.
15: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
13: अरे कहाँ हो तुम?
15: हो आलो आलो. परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम.
16: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
17: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.

0: ये है लाइका रेडियो। लोकेशन लोकेशन लोकेशन
1: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
0: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
1: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
0: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
1: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
0: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
1: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
0: High appreciation.
1: In Dubai.
2: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
0: Father son no bond jitlo special che itli j special film aavi rahi che.
3: Uncle tame pehla thi aavaj chho.
4: Aava etle keva.
0: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
4: Maro baap banvani koshish karat tu buddhi vechi aave chhe tu. Are jindagi evi mauj thi jeevje. जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे।
0: आ फादर्स डे फील द इमोशंस, लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
4: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर।
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me.
7: Southall Travel, at all protected.
8: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie, results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
9: ये है लाइका गोल्ड